बादशाह तान गुरु अर्जन देव महाराज आप कहते हैं फिर ओ परिपूर्ण परमात्मा सदा उन्हां जपन वालियां दे अंग संग है। ए शब्द गुरु अर्जन देव पातशाह दा उचारण कीता होया जिदे विच आप कहंदे हन हे प्रभु हर का नाम हृदय नित ध्यान। हे प्रभु मैं तेरा नाम सदा हृदय विच वसावा। हर का नाम हृदय नित ध्याई सदा तेरा नाम मैं हृदय विच जपा मन करके जपा। हर का नाम हृदय नित ध्याई संगी साथी सगल तराई। ए नाम जपन दे सदके जिना जिना ने भी मेरे नाल बैठ के तेरा सिमरन कीता है नाम जपया है और जपणगे हे प्रभु कृपा करी उन्हां सारिआं नूं ही अपने नाम दे सदके तार लई। हर का नाम हृदय नित ध्याई संगी साथी सगल तराई। ते जो नाम जपदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे न फिर उन्हां दे अंग संग हुंदा है गुरु। गुरु मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर तिस सदा संभाले। जो सिमरनगे परमेश्वर दा नाम साईं दा नाम आख्या सदा गुरु उन्हां दे अंग संग है। गुरु मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर तिस सदा संभाले। और जद नाम जपेगा प्राणी नाम जप के उसकी आत्मा परमेश्वर दे चरणा नाल जदों एक मिक हो जाएगी। बाबा आनंद सिंह जी महाराज क्या करदे सन जदों जीव नाम जपदा है फिर नाम जपन वाला और नामी विच फर्क नहीं रह जांदा। हर हर जन दो एक हैं बिप विचार किछ नहीं जल ते उपज तरंग जियो जल ही बिखे समाए। नाम जपन वाली आत्मा परमेश्वर दे एडे नेड़े हो जांदी है कि फिर जदों संसार दे दुख आउंदे हन तां उस आत्मा नूं ओ दुख दुखी नहीं कर सकदे। दुखां विच भी रह के ओ सदा परमात्मा दा शुकराना करदा है पाणी मंदा है ते की कहिंदा है तेरा किया मीठा लागे। हे प्रभु तू सुख विच रखिया मैनू दुख विच रखिया है ए तेरा ही हुक्म है तेरा ही पाणा है। तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने मैं तां हे प्रभु सदा तेरे चरणा विच एही आराधना करांगा कि तू मैनू अपना नाम बख्श मैं तेरा सिमरन करा अमृत वेले उठ के तेरी भक्ति करा। और जो परमात्मा दी भगती करदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने गुरु सदा उन्हां दे अंग संग है।

निकलियां बाबे बुढ़े दियां तां गुरु अर्जन देव जी ने कहा, बाबा जी ए राज राज ही रहन देना, खोलना नहीं। गरीब निवाज चले हो, एक वरा मात गंगा जी नो तां दर्शन दे जाओ, जो गुरु अर्जन देव जी दी सुपत्नी सन। बाबा बुढ़ा जी भज के गए लंगर विचों, मात गंगा जी नूं सदिया, माता जी साहब जी चले हन लाहौर, ते सचमुच इस बार जदों जाउंगे वापस परत के नहीं आउंगे। ऐसा केड़ा जरूरी काम पै गया इस वेले आए। मात गंगा जी ने जदों नेत्र बंद करके ध्यान विच वेख्या तां आप दियां वी भुब्बां निकलियां। साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज निम्रता दे पुंज कहन लगे, गंगा जी साडे शरीरां दा मेल हुण इत्थे तक ही सी, अगे हुण असी गुरु नानक दी दरगाह विच इकट्ठे होवांगे। साथ संगत बोलो श्री, साथ संगत बोलो श्री। गुरु हरगोबिंद जी जो उस वेले बाल अवस्था विच सन, आए पिता दे दर्शन कीते, साहब जी ने सोना हाथ गुरु हरगोबिंद जी दे सिर ते रखिया, ते फिर लाहौर वाल चाले पा दिते। नाल तुरी जाउंदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह, ते नाल रसना तो ए शब्द उचारी जाउंदे हन, की कहंदे हन।

रेत तपाओ, रेत तपाई पड़ पूंजे नू सदिया जो दाने पुंदा सी के तू अपने कड़छे पार पार के गर्म रेत लैके अर्जुन दे सिर विच पा। साथ संगत बोलो श्री तलों तत्ती तवी अग बल रही है उत्तो गर्म रेत दे कड़छे पै रहे हैं ते साहब जी दे जदों भी बुल फुरकदे हैं तां विच्चों एही आवाज आउंदी है तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। साई मियां मीर जदों पता लग्या साहब जी गुरु अर्जन देव लाहौर आए हैं जदों दर्शन करन आया वेख के हैरान रह गए कि गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोह ते बैठे हैं उत्ते गर्म रेते पै रहे हैं ता हाथ जोड़ के बेनती कीती गरीब निवाज एक ही पाना है। साहब जी कहन लगे साई मियां मीर तू पुछिया सी ना ऐसे प्यारे दे दर्शन कराओ के जो कहिंदा होवे तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई ता आवेख लै अग्न विच शरीर जल रहा है तन तप रहा है मन शांत है हरि नाम से अंदर परमेश्वर दा नाम वसया है अंदर सेक नहीं पहुंच रहा मन नु आ शरीर नु क्या दुख देवेगा ए चंदू। साई मियां मीर जिसने हरबंदर साहब दी नी रखी सी जात दा मुसलमान सी लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह दा प्यारा सी ते गुरु अर्जन देव महाराज ने उस मुसलमान मियां मीर पासों अमृतसर दे विच जदों हरमंदर साहब साजिया ता नीव हरमंदर साहब दी मियां मीर पासों रखाई के ए सांझी वालता दा घर है गुरु नानक दा घर सांझी वालता दा है। मियां मीर ने बेनती कीती गरीब निवाज जे आप कोई कला नहीं दिखांदे शक्ति नहीं दिखांदे ता मैनू हुक्म करो मैं दिखावां। साहब जी कहन लगे मियां मीर करना वड्डी गल नहीं है जरना वड्डी गल है शक्ति होंदिया होया जर लेना ए वड्डी गल है। ता उपर वेख गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या हजरत मियां मीर उपर तक जा उपर देखिया ता 33 करोड़ देवी देवता हाथ बने खड़ोते हैं गरीब निवाज सानू हुक्म कर लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह पाणी विच बैठे हैं ते की कह रहे हैं।

जिस वेले आख्या गुरु अर्जन देव ने, मियां मीर जितने तन पर पड़ेंगे छाले उतने सिख होंगे सिदक वाले, उतने ही सिख सिदक वाले होंगे। जे गुरु ने पाना नहीं मनिया तो सिखा ने फिर पाना क्या मनना है। ते फिर जिस वेले चंदू आया अजे भी मन नहीं भरिया तो साहब जी कहन लगे चंदू साडा मन करदा असी इशनान करिए। तीन दिन हो गए हन चौकड़ा मार के बैठे हैं, साडे प्यार वाले जेडे नाल आए सन उन्हां नूं बुलाओ। ओ प्यार वाले गुरु अर्जन देव पातशाह नूं प्यार नाल इस वेले रावी दे किनारे ते लियाए। साहब जी कहन लगे हुण साडा गुरु नानक दे पास जाउण दा समां आ गया, असी जपजी साहब पढ़ांगे ते जपजी साहब दा जिस वेले समाप्ति करांगे अपना शरीर अलोप कर लांगे रावी विच ते तुसी वापस हरिमंदर साहब अमृतसर चले जाणा। ते ए सब नूं आखणा कि गुरु अर्जन जी ने उस अकाल पुरख दे पाणी विच रह के उस दे हुकम विच अपना सिर निभाया। ते जपजी साहब जिस वेले गुरु अर्जन देव जी ने आरंभी ते जिस वेले जपजी साहब दा भोग पाया जिनी नाम ते आया गए मुशक्कत काल नानक दे मुख उजले गेती छिट्टी नाल रावी विच अपना शरीर अलोप कर लिया। ते मानो अजे भी रावी दी लहरां विचों ए आवाज गुरु अर्जन देव दी आ रही।

सहजोग बेबान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लग्यान ध्यान पढ़िया पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया उन जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा सहवे जिन सचो सच वरता है आज जिस दिन

फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नगर करे सो पाए आस ले सेते।

पेड़ तो सीख खाई, हक सुई जगत का साई। नील वस्त्र पहर होवे परवान, मलेश तान ले पूजे पुराण,

आठ तीर्थ जे नहाव है उतरे नाई मैल जिन पाटन दरबार गुजरते बड़े संसार जिन नेह लगा रब सेती देखना विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाहे परवाह नहीं किसे केरी बात सचे ना दरबार प्रखर कुंदा जब दे ता काहे दीवाने को कलमे।

जाको ठाकुर ऊंचा होई, सोजन पर घर जात ना सोई। सो साहिब रया भरपूर, सदा संग नाही प्रभु दूर। कवला चरण सरन है जाके, कहो जन का नाही घर ताके। सब कोई कहे जास की बाता, सो समरत निज पद है दाता। कैत कबीर पूरन जग सोई,

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए, जो खिन में किल बिक सब करे विनाशा, जे हर त्याग अवर की आस कीजे, ता हर ने फल सब घाल गवास। मेरे मन हर ऊपर कीजे भरवासा, जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जनदासा। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे, ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पे कहिए।

सिकंदर को हर समान नहीं राजा ए तू पत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सो एकत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ

जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आए। ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोतायो। मथुरा कहिंदा है पट के जद तक साडे भाग नहीं समझागे, असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कलयुग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए, ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज। और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावे जनकाद जुगाद जुगेसर, हर रस पूरन सर्व कला गावे सनकाद साध सिदादक, मुन जन गावे अचल छला गावे गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जिनक दा दरबार लग्या सी, और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जिनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जिनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की, और भगत वड्डा क्यों गिणिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखी है। साथ संगत बोलो श्री, ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरां दा जिक्र राजा जनक देव लोक नू गया, देवते भी लोचते हैं कि कोई जपन वाला साड़ी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नू देव लैके देवते लैके अपनी पुरियां विच जा रहे सन, ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई। राजे जनक ने पुछया ए कौन रो रहे हैं, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हैं जिथे पए होए जीव अपने कर्मा दे अनुसार भोग भोगदे हैं, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जेड़ा हीरे लालां तों भी महंगा सी, जेड़ा स्वास हीरे लालां तों भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पाके, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता है और तू बंदगी नहीं कीती, तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया, उस स्वासां नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया। ताई आखिया

अजय सरों में पीख्या खाए ऐसी दरगे मिले सजाए रोवे रामन काला पया सीता लखमन विछड़ गया रोवे दसर लंक गवाए जिन सीता अंधी डारू आए रोवे पांडव पय मंजूर जिनके स्वामी रत हजूर रोवे जन्मे जाख गया एक ही कारण पापी पया रोवे शेख मसा एक पीर अंतकाल मत लागे।

तेरे लोस से आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमृतचा दीवान सच्चा तेरा उत्कृष्टा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चा है सबदान सच्चा है सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच तिहाइन सच।

चोरा जारा तय कूड़ियारा खरा बंगेकार एक हुंदा खाए चले अथाऊ तेरा बेकाई कार जल थल जिया पुरिया नो आकार आकार।

होमे हजात है होमे कर्म कमाहे होमे ही बदना फिर तंजोनी पाहे होमे किथो पजाए किस संजम ए जाए होमे एहो हुक्मे पया किस फिराहे होमे तीर रोग है दारू थी इस माहे कृपा करे दे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नान कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए।

जगत का साई। नील वस्त्र पहर होवे प्रवान, मलेश तान ले पूजे पुराण, अवाखिया का कुत्ता बकरा खाना, चौके ऊपर किसे ना जाना, देखे चौका गड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़े यार, मत बिटे मत बिटे ए अन्न साडा फिटे, तन फिटे फेड़ करेन, मन फिटे चली करेन, सच आई है सच हो वै ता सच पाई पौड़ी जिते अंदर सब को, वेख नदरी हेठ चलाएगा आपे दे बड़ियाई, आपे ही कर्म कराएगा वडो वडावड़ मेतनी, सिरे सिर तंदे लाएगा लंगर पट्टी जे करे, सुल्ताना का कराएगा कर मंदिर।

आठ तीर्थे नाव है उतरे नाई मैल जिन पट अंदर बाहर गुजरते बड़े संसार तिन नेह लगा रब सेती देखना विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाहे परवाह नाई किसे केरी बात सचे ना दरवाज प्रखर मंगा जब दे काहे दीवाने को कलमे का हम तुम हमें दर लै लिखा पीर छुटे नानका ज्यो तेल पौड़ी आप ही करना क्यों कर आप ही तय तारी है देख ही तय अपना कर कच्ची पक्की सारी है जो आया तो चल सुन सब कोई आई वारी है जिसके लिए प्राण

चलो भैड़ा दूजा एक नहीं आशकी दूजा लगे जाए नानक आश काटिए सभी कमाए चंगे चंगा कर मन मंदे मंदा हो आश तू वे ना किए जे लिखे वरते सोए नानक दोवें कुड़ियां खाए ना खाई माए मोड़ी सिरा सुपाइए सो साहिब सदा संभालिए जुड़ी पता अपना साकाल बुरी क्यों खालिए दिल नगर निहालिए जो साहब नाल हारिए।

अंदर कौतक वरता रहे। ब्यौड़ी च भाई प्राणा जी बैठे, दर्शन करन नूं चित कीता, उठे सुलाखां दे परले पासे निगाह गई, सारा दिन बगदी रही अग दी रोशनी विच वेखिया, कुरला उठे साहिबां दे शरीर ते पए हुए छाले, सिख कोलों प्यार विच बर्दाश्त नहीं होया, उन्हां सुलाखां नूं सिखां नूं फड़िया, जोर दी झटका मारिया, साहिबां ने नेत्र खोले, मुस्कुरा के वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह, गुरमत सिखाउण वाले तू ही मुस्कुरा सकना है, गुरमत तो बारा केड़ा मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा के तकिया, भाई पराणा की हो गया, पातशाह मैथों नहीं जरिया जांदा। ते साहिब कहंदे ने वापर रहियां ने मेरे शरीर ते जरिया, तैथों नहीं जांदा। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना, भाई गुरदास जी, भाई पराणा मालक दी रचना है, जो कर रहे है मेरे शरीर ते वापर रही है ते मैं सह रहे हैं। तेरे कोलों नहीं सहने, तेरे शरीर ते आ गई ते की करेगा बादशाह, मैनू तुसी आग्या दियो, मैं तबाह कर दिया सारा कुछ, मैं फना कर दिया। साहब हस पे, कह लगे भाई पराणा जितन फना करना होगा, जिन्हें रचिया आपे कर ले, तैनू फना करन दा फिक्र कित्थों पै गई, तू फना करन दियां ताकतां कित्थों आ गईयां तेरे विच। कहिंदा पातशाह तेरे चरणा विचों। ते साहिब हस के कहिंदे ने भाई पराणा, जे मेरे चरणा चो तबाह करन दियां ताकतां तेरे कोल आईयां ने, ते फिर मैं ही नहीं तबाह कर सकदा, मैं जे तोड़ना फोड़ना चाहवां मैं नहीं कर सकदा। नहीं भाई पराणा, आपां कुछ करता पुरख दी रचना विच कुछ बना सकीए, कुछ उसार सकीए, ते गल वखरी है। तबाहियां दी गल आपां नहीं सोचनी, आपां तां उसारियां दी गल सोचनी। मन नूं टिकाणे रख, हौसले विच रहो, ओदी रजा विच रहो। साहिब उठे अपने आसन तो, उठे ते आके मोढे ते हथ रख दिंदा, सिखां विचों पार करके प्यारा जिहा हथ भाई पराणे दे मोढे ते रखिया। ओह जिहड़ी अंदर जप तप दी शक्ति उछाले मारन लग पई सी, सारी दबा दित्ती, ठंड वरता दित्ती। आ गए बाहरों पैरुए, उन्हां ने आके भाई जी नूं बड़ा कुटिया, बड़ा मारिया, पर मालिक दी बख्शिश कीती होई, धन गुरु अर्जन साहिब दी बख्शिश कीती, सहनशीलता सदका फिर भाई पुराणे ने हाए नहीं कीती, सी नहीं उचारी। वाहिगुरु वाहिगुरु जपदिया होया बेसुरती तक तां पहुंच गए, लेकिन हाए नहीं आखी, क्योंकि रजा च रहना आ गया। रजा च रहना आ जावे ना, ते फिर हाए नहीं मुंहों निकलदी, शुक्र मुंहों निकलदा है।

हंस हंस के इतने तसीहे ता बर्दाश्त कर ले। जालम ने बहुत चाया के किवें गुरु अर्जन दे अंदर क्रोध दी अग्नि पड़क उठे, पर उनानु की पता सी

जे हुक्म होया इत रहबर नू एक पैगंबर नू अंगयारियां ते चलन दा सामने अंगारे वेखे घबरा उठया पुकार कीती अपने खुदा दे चरणा विच हे परमात्मा ए अंगारे इना ते मैं चलांगा ते मैं सड़ जावांगा ए फुल बन जान प्रभु दा भगत सी अंदर जेड़ी ए लालसा उत्पन्न होई परमेश्वर ने ओ दी भावना पूरी कीती पौतक वरत्या ओ अंगारे फुल बन गए ऐथे ही बस नहीं खंबा तपा के लाल कीता है अग नाल हुकम होया हरनाकश दा प्रहलाद नू इस खंबे नू गलवकड़ी पा मैं वेखदा तेरा परमात्मा तेरा परमेश्वर तेरा राम तेनू किवें बचाण वास्ते आउंदा है। जदों प्रहलाद अगे वधिया खंबे नू गलवकड़ी पाण वास्ते उस खंबे दे विचों सेक आया क्योंकि अग नाल तपा के लाल कीता होया सी। मन थोड़ा जा डोल गया भगत दा अंदरों आवाज आई हे भगवान जे मैं इस खंबे नू गलवकड़ी च लिया ते मैं ते सड़ जावांगा। कहंदे ने ऐसी एक दंत कथा सुनन विच आउंदी है कि जानी जला के वेखिया प्रहलाद ने उस खंबे दे उत्ते ता की वेखदा है कि एक कीड़ी तुरी आउंदी है। एकदम ख्याल बदल गया भगत दा कि ए कीड़ी निक्की जही ए इस खंबे ते उत्ते तुरी आउंदी है ते ए नहीं सड़ रही मैं किवें सड़ जावांगा। कहंदे ने गल वकड़ी पा ले पर एक बारी जरूर मन

0: काल बिन कुंभ न हो। ज्ञान का बधावन रहे गुरु बिन ज्ञान न हो। ओ गुरु बिन ज्ञान न हो।
1: पापा जी थोड़ी इस छबील के आसरे साडा पेंडा कटिया जाता है।
2: आसरा उसका आधार था। मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया
2: अब मोहे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी मन में जल लग रहे हैं। थोड़े को हजार ही यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हो।
2: कादा पता।
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी की एक छपड़ी और कंडे ते बेरी का दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने।
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इको ही होगी जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाल ही आवाज आ रही सी
4: कागू हंस करे।
2: कागू हंस करे। कागू हंस कर ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उठे गुरु अमरदास जी का दरबार है। गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास।
2: हां बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है। उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल लै जाणगे जिस मंजिल तुहाडे दिलां च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल।
2: एथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है उथे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असि चलने हैं।
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोहे भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परी दायूज साज सुबह नवाज गुजार जो सिर साई नानी वे सो सिर कफल उतार। जो सिर साई नानी वे सो सिर की देखाए उन्ने पैठ जलाए बालन संदे थाए बालन संदे थाए।
5: साहब जी की गल है पहला तुसी ने कहा दिता।
4: असी किस तरह जानते सोचते हैं पहले पूछ लिया होंदा।
5: की पूछना सी।
4: सारे मुसाफिरों ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट किया पर असी साडे कोल ना तिल चौल ना धर्म ना तमड़ा।
5: और चलिए भैने मैं कोई कम कमाइया लई तो नहीं करता। मैं तो गुरु के दर्शन नूं आई हां संगतां दी सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
4: फिर भी तुहाडियां लोड़ां।
5: मेरिया लोड़ां तो खुदावंद पूरियां करता है तो होर मैनूं चाहिदा वेखी जो कुछ मैं लोग दे जांदे ने जाके गुरु के दरबार चढ़ा दिना। दिन वेले बेड़ी चलाना तो राती लंगर चो ढिड भर के बाहर थले दसो जाना। मैं उगन हारा कोगन पले नाही।
4: तन हो तुसी।
5: तन ते मैं नहीं पैना। तन तो गुरु महाराज है जरा सब नू अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलांदा है। उहदे दर ते जाओगे तो उन्हू कहना जिन्हें सानू यह सागर पार कराया उस औगन हारे नू इस पाव सागर तो पार उतारो।